ये दुनिया एक मेला है जहाँ इंसान मिलते हैं, गरीबों के दुआओं से मगर भगवान मिलते हैं।

0: हाँ किसी के हाथ मचा तू। हमने पूछा, अरे हमने पूछा कितने हो तुम, तब वो बोले दस।
1: हम कहा बस, का कहा बस,
0: ऐसा हाथ जमा

0: प्यार से उसने हमका दिया गुलाबी फूल।
1: हमका ई का दे तो हमका फूल का दे तो फूल।
0: हाथ जोड़ कर फिर वो

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: gato.
1: जय हो राधेश्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ये है

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे?

ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पान।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, हाँ हाँ, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखे

के जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पहन बनाओ रतबाला, खुल जाए बंद अकल का ताला।

अरे गदकू, ओ पांड्या, अरे ओ धोंडिया, अजी गधव प्रसाद अमा छनमिया, अरे ओ बिच्छू महाराज, ओए बड़बड़ सिंह तने किधर पधारो और सुनो मेरी कथा जिसमें भरी है भीषण व्यथा। ई गलियन का धर्म अलग है रीत रिवाज, का समझे ना समझे तो समझ लो हमसे, हम समझा दे आज।

Chan chan chanan chanan. Khan khan khanan khanan. Chan chan chanan chanan khanan khanan. Natkat chori banke chakori. Chanchal gori kar dil ki chori. Kabhi lachak kar, kabhi chamak kar, kabhi jhatak kar, kabhi matak kar. कभी लटकाऊ लटकाऊ, कभी झटकाऊ झटकाऊ, कभी ठुमकाऊ ठुमकाऊ, कभी मटकाऊ मटकाऊ, लचक लचक, चमक चमक, झटक झटक, मटक मटक, पलट तेरा ध्यान किधर है भाई।